जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्राजकाचार्यष्टौ दर्शन श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो